0: यही लोग नेकियों में जल्दी करते हैं और यही इनके लिए आगे निकल जाते हैं, और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदार नहीं बनाते। और हमारे पास एक किताब है जो सच सच कह देती है और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, मगर इनके दिल इन बातों की तरफ से गफलत में पड़े हुए हैं। और इनके सिवा और आमाल भी हैं जो ये करते रहते हैं, यहां तक कि जब हमने इनमें से आसूदा हाल लोगों को अजाब में पकड़ लिया तो वो उसी वक्त चिल्ला उठेंगे, आज मत चिल्लाओ, तुमको हमसे कुछ मदद नहीं मिलेगी, मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थी और तुम उल्टे पांव फिर फिर जाते थे, उनसे सरकशी करते गोया एक किस्सा गो को छोड़कर चले जाते थे। क्या इन्होंने इस कलाम में गौर नहीं किया, या इनके पास कोई ऐसी चीज आई है जो इनके अगले बाप दादों के पास नहीं आई थी, या ये अपने पैगंबर को जानते पहचानते नहीं इस वजह से इनको नहीं मानते।
1: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون

कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि वो कौन है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है और वो पनाह देता है और उसके मुकाबले कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता। फौरन कह देंगे कि ऐसी बादशाही तो अल्लाह ही की है। कहो कि फिर तुम पर जादू कहां से पड़ जाता है? बात यह है कि हमने इनके पास हक पहुंचा दिया है और ये जो बुतपरस्ती किए जाते हैं बेशक झूठे हैं। अल्लाह ने न तो किसी को अपना बेटा बनाया है और न उसके साथ कोई और माबूद है। ऐसा होता तो हर माबूद अपनी अपनी मखलूकात को लेकर चल देता और एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता। ये लोग जो कुछ अल्लाह के बारे में बयान करते हैं अल्लाह उससे पाक है, वो पोशीदा और जाहिर को जानता है, और मुशरिक जो उसके साथ शरीक ठहराते हैं उसकी शान उससे बुलंद है।

0: खुशहाली जो ज़रियो आहिन उते सुठी खुराक ढोरन जी ज़रूरत आहे।
1: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खां आज़मायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खां नालो वठी तलब कंदा।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीने फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
5: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आहिन।
5: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 आई 0242-460100।

0: जा पीउ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध ऐं वठी अच
1: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालन खां आज़मायल सखर वारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन खां नालो वठी तलब कंदा
2: हा भाग भरी चंगो थो लगे मां हाणे ई थो वठी अचा
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो
4: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, अंबा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03008569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहिक वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: अई अदी अज तो डाडी खुश पे नजर अची
2: छो न खुश थिया अदी जदे खा मुझे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार बीणी थी वई आहे ऐ हाणे पैसा भी बीणा था अचन ही दिस सोनियो चूड़ियो
1: तमाम वही चवा उन ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर का नालो वठी खरीद करियो
4: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
4: हाने यचो मेरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
6: उम्मीद के दिए जलते हैं
7: रोशनी का काफिला तरफ गामजन स्कूल लापुर ताली कुर्बान अली मेमन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा
9: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
8: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
9: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
8: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
8: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
9: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
8: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
9: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
10: 03013992836।
11: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94।

केपीए के मुख्तलिफ इलाक में सिक्योरिटी फोर्सेज कुछ डीन का जारी ऑपरेशन में एक्वी दहशतगर्द मार आईएसपीआर मूजिब उत्तर वजीरिस्तान में दहशतगर्दन पाक अफगान सरहद का दाखिल थे की कोशिश कई। सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मार उत्तर वजीरिस्तान में एक बी कार्रवाई में पाक अफगान सरहद भरसा सिक्योरिटी फोर्स के मौसर कार्रवाई में 7 खाजन के जन्म भेड़ो किया। क्वाट ए डेरा इस्माइल खान जिले में मुख्तलिफ कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मार सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा कामयाब कार्रवाई से सिक्योरिटी फोर्सेज के भेटा पेश। सदर आसिफ जरदारी पाकिस्तान के सरहद जो दिफा ए दहशतगर्दी का खात्मो पे तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ

वतन जे अजीम सपूतन के सलाम। सिंध समेत सजे मुल्क में अज एकहठो योम दिफा योम शोदा मल्हायो पियो वञे। मज़ार कायद ते गार्ड जी तब्दीली जी पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स जे कैडेट जी मज़ार कायद ते शानदार परेड। गार्ड जूं जिम्मेवारियूं संभाले वरतियूं। तकरीब के खिताब कंदे एयर वाइस मार्शल हसन फैसल चयो त पाक फिज़ाया हर डुखे घड़ीअ में क़ौम जे उमेदनि ते हमेशह पूरो लथी आहे। फिज़ाई हदुनि जो दिफ़ा पाक फिज़ाया जे मज़बूत हथनि में आहे। हर डुखे घड़ीअ में पाक फिज़ाया पंहिंजूं ख़िदमतूं पेश कयूं आहिनि। योम दिफ़ा ते नंढनि तोड़ी वॾनि शहरनि में सेमिनार तकरीबूं कोठाए ऐं रैलियूं कढी वतन जे दिफ़ा लाइ जान क़ुर्बान ॾींदड़नि शहीदनि ऐं गाज़ियुनि खे भेटा पेश कई पई वञे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां योम दिफ़ा जे मौक़े ते पाक फ़ौज जे शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश। सदर आसिफ अली ज़रदारीअ चयो त 6 सेप्टेम्बर असांजे क़ौमी तारीख़ में यादगार मक़ाम रखे थो। हीउ ॾींहुं असांखे गाज़िन ऐं शहीदनि जे अज़ीम क़ुर्बानीनि जी यादि ॾियारे थो। हीउ ॾींहुं असांखे मौक़ो फ़राहम करे थो त असां पंहिंजे अज़ीम सपूतनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश कयूं। अज़ीम सपूतनि 1965 में दुश्मन जे नापाक इरादनि खे नाकाम बणायो। 6 सेप्टेम्बर वारो जज़्बो ऑपरेशन बुनियान मरसूस में ॿीहर निमाया थियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो चवणु आहे त 6 सेप्टेम्बर पाक फ़ौज जे बेमिसाल अज़म ऐं क़ुर्बानीनि जी यादि ॾियारे थो। क़ौम तर्फ़ां गाज़िन ऐं शहीदनि खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो। पाकिस्तान अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ फ़ाल किरदार अदा कंदो रहंदो। योम दिफ़ा जे मौक़े ते हथियारबंद फ़ौज जो शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश। ISPR पारां जारी कयल बयान मूजिबि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नेवल चीफ ऐं एयर चीफ पारां शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश कयो वियो। हथियारबंद फ़ौज जे गाज़िन खे बहादुरी ऐं साबित क़दम रहण ते सलाम पेश कजे थो। 6 सेप्टेम्बर क़ौमी इताद जुरत बहादुरी ऐं अज़म जे लाज़वाल अलामत आहे। 6 सेप्टेम्बर 1965 ते पाकिस्तानी क़ौम वतन जे दिफ़ा लाइ मुतहदी दुश्मन जो मुक़ाबिलो कयो। शहीदनि जूं लाज़वाल क़ुर्बानीूं ईंदड़ नसल लाइ मशल राह आहिनि। ISPR पारां जारी कयल पधराई में चयो वियो आहे त पाकिस्तान खिते में अमुन खुशहाली ऐं इस्तेहकाम चाहे थो। अमुन अमान जे गॾियल अज़म खे कमज़ोरी न सम्झो वञे। पाकिस्तान ख़िलाफ़ कंहिं बि अग्राहीअ जो फौरी ऐं फैसलाइतो जवाब ॾिनो वेंदो।

दिन के भल जा खुश करे पर सिंध के कुर्बानी जो बकरो बनाने का पासो करे। सीनियर वजीर शर्जील मेमण ख्वाजा आसिफ के बयान ते रद्द अमल में चया है तो पंजाब असेंबली सराइकी सूबे के हक में ब भेरा ए सिंध असेंबली सिंध में वधिक सूबा ठाण खिलाफ 8 भेरा 18 मंजूर कर चुकी है।

इलाके डिफेंस में औरतुन विच में जेड़े वाके जो एसएसपी कोरंगी जे सस साली साले पुलिस अहलकार खिलाफ केस दाखिल। एसएसपी कोरंगी फिदा जावरी जे रिश्तेदार औरतन एक औरत भाव के तशद जो निशानो बनायो। वाके बाद तशद निशानो बनज धुरते ही केस दाखिल करायो। एडिशनल आईजी कराची जे हिदायतन खां पोए एसएसपी फिदा जावरी जे माइटन खिलाफ दुरुक्षान थाने ते केस दाखिल कयो वयो।

वतन के अजीम सपूतन के बेटा पेश करने लाए मुख्तलिफ शहरन में रैलियों तकरीबों सखर मिठी कंदकोट सामारो तंगवाणी जोई ए बियन शहरन में रैलियों कढ़ी पाक फौज के शहीदन के बेटा पेश कई वही।

0: ऐं ठते में ज़ाल मुड़ुस जा ॿनीअ मां लाश हथ 28 वरनि जे रमेश ऐं 25 वरनि जी किशोरी जा लाश मिलिया। पुलिस जो चवण आहे त लॻे थो ज़ाल मुड़ुस आपघात कयो आहे। ज़ाल जो लाश ज़मीन ते पयल हो ऐं मुड़ुस जे वण में फाओ खाधल लाश मिलियो। वधीक जांच जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज़ टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: असली चीजां चारो मसालो जी सुन्याणप ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डिसी करे खरीद कंदा। जीजान चारो मसालो, ढोरे जो हाजमो दुरुस्त। जीजान चारो मसालो, ढोर सेहतमंद। जीजान चारो मसालो,
2: जीजान चारो मसालो, हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03008 5569।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
5: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
6: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 ऐं 02424601000।
7: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर,
8: मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
9: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
8: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
9: 03013992836।
10: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वैक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल टू पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौज पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो साइकिल जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: एस, तीन की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए, घने मजबूत और के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर, रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और

0: इस्तीफ़ाएं योमे शोदा मल्हायो पियो वञे। मज़ारे काय ते गार्ड जी तब्दीली जी पुरोकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स जे कैडेट जी मज़ार काय ते शानदार परेड। गार्ड जूं ज़िम्मेवारियूं संभाले वरितियूं। तकरीब के ख़िताब कंदे एयर वाइस मार्शल हसन फैसल चयो त पाक फिज़ाया हर ॾुखी घड़ीअ में क़ौम जे उमेदनि ते हमेशा पूरो लथी आहे। फिज़ाई हदनि जो दिफ़ाई पाक फिज़ाया जे मज़बूत हथनि में आहे। हर ॾुखी घड़ीअ में पाक फिज़ाया पंहिंजूं ख़िदमतूं पेश कयूं आहिनि। योम दिफ़ा ते नंढनि तोड़ी वॾनि शहरनि में सेमिनार तकरीबूं कोठाए ऐं रैलियूं कढी वतन जे दिफ़ा लाइ जान क़ुर्बान ॾींदड़ शहीदनि ऐं गाज़ियुनि खे भेटा पेश कई पई वञे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां योम दिफ़ा जे मौक़े ते पाक फ़ौज जे शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश। क़ौमी तारीख़ में यादगार मक़ाम रखे थो। ही ॾींहुं असांखे गाज़ियुनि ऐं शहीदनि जे अज़ीम क़ुर्बानीनि जी यादि ॾियारे थो। ही ॾींहुं असांखे मौक़ो फराहम करे अज़ीम सपूतनि 1965 में दुश्मन जे नापाक इरादनि खे नाकाम बणायो। 6 सेप्टेम्बर वारो जज़्बो ऑपरेशन बुनियान मरसूस में ॿीहर निमायां थियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो चवणु आहे त 6 सेप्टेम्बर पाक फ़ौज जे बेमिसाल अज़म ऐं क़ुर्बानीनि जी यादि ॾियारे थो। क़ौम तर्फ़ां गाज़ियुनि ऐं शहीदनि खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो। पाकिस्तान अमन इस्तहकाम लाइ फ़ाल किरदार अदा कंदो रहंदो। योम दिफ़ा जे मौक़े ते हथियारबंद फ़ौज जो शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश। ISPR पारां जारी कयल बयान मूजिबि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नेवल चीफ ऐं एयर चीफ पारां शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश कयो वियो। हथियारबंदनि फ़ौज जे गाज़ियुनि खे बहादुरी ऐं साबित क़दम रहण ते सलाम पेश कजे थो। 6 सेप्टेम्बर क़ौमी इताद जुरत बहादुरी ऐं अज़म जी लाज़वाल अलामत आहे। 6 सेप्टेम्बर 1965 ते पाकिस्तानी क़ौम वतन जे दिफ़ा लाइ मुतहती दुश्मन जो मुक़ाबिलो कयो। शहीदनि जूं लाज़वाल क़ुर्बानीूं ईंदड़ नसल लाइ मशल राह आहिनि। ISPR पारां जारी कयल पधराईअ में चयो वियो आहे त पाकिस्तान खिते में अमुन खुशहाली ऐं इस्तहकाम चाहे थो। अमुन अमान जे गॾियल अज़म खे कमज़ोरी न सम्झो वञे। पाकिस्तान ख़िलाफ़ कंहिं बि अग्रहीअ जो फौरी ऐं फैसलाइतो जवाब ॾिनो वेंदो। KP जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सिक्योरिटी फोर्सिस जी कार्रवाई। 21 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि उत्तर वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दनि पाक अफ़गान सरहद खां दाख़िल थियण जी कोशिश कई। सिक्योरिटी फोर्सिस जी कामयाब कार्रवाईअ में 10 दहशतगर्द मारिजी विया। उत्तर वज़ीरिस्तान में 1 ॿी कार्रवाई में पाक अफ़गान सरहद भरिसां सिक्योरिटी फोर्सिस जी मौसर कार्रवाईअ में 7 ख़ारजियुनि खे जनम भेड़ो कयो वियो। कुआट ऐं डेरा इस्माइल खान ज़िलनि में ॿिनि मुख़्तलिफ़ कार्रवाइयुनि में 4 ख़ारजी मारिजी विया। सदर ऐं वज़ीर आज़म पारां कामयाब कार्रवाईअ ते सिक्योरिटी फोर्सिस खे भेटा पेश। सदर आसिफ अली ज़रदारीअ चयो त पाकिस्तान जे सरहदुनि जो दिफ़ा ऐं दहशतगर्दीअ जो ख़ात्मो पहिरीं तरजीह आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो त दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ जंग में पूरी क़ौम सिक्योरिटी फोर्सिस सां गॾु आहे। वतन जे अज़ीम सपूतनि खे भेटा पेश करण लाइ मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं तक़रीबूं। सखर, मिठी, कंदकोट, सामारो, उबावड़ो, टंडो आदम, टंडो गुलाम हैदर, तंगवाणी, जोई ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं कढी पाक फ़ौज जे शहीदनि खे भेटा पेश कई वई। नून लीग पंहिंजे इतिहादनि खे भलजां ख़ुश करे पर सिंध खे क़ुर्बानीअ जो ॿकरो बणाइण खां पासो करे। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ख्वाजा आसिफ जे बयान ते रद अमल में चयो आहे त पंजाब असम्बली सराइकी सूबे जे हक़ में 2 भेरा ऐं सिंध असम्बली सिंध में वधीक सूबा ठाहिण ख़िलाफ़ 8 भेरा ठहराउ मंज़ूर करे चुकी आहे। कराचीअ जे इलाइक़े डिफेंस में औरतुनि विच में जेड़े वाके जो SSP कोरंगीअ जे ससु साली साले ऐं पुलिस अहलकार ख़िलाफ़ केस दाख़िल। SSP कोरंगी फिदा जांवरीअ जे रिश्तेदार औरतुनि हिकु औरत ऐं भाउ खे तशद जो निशानो बणायो। वाके बाद तशद जो निशानो बणजण धुर ते ई केस दाख़िल करायो। एडिशनल IG कराचीअ जे हिदायतुनि खां पोइ SSP फिदा जांवरीअ जे माइटनि ख़िलाफ़ दुरुख़शान थाणे ते केस दाख़िल कयो वियो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-1623-793।

0: जी जान तारो मसालो हर वे जे पंसार स्टोर आई जानवर जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 03008-55-69।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: सोनी अॼु त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे।
1: हा साईं, ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे।
0: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
1: चाचे, जुम्मन जी खुशहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे।
0: छा?
1: उहे खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि। हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था, गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो।
0: वाह सोनी, वाह वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई। पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर?
1: साईं ॿुधाइनि, ॿुध ऐं अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं, हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फॉस्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569 रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

वतन के अजीम सपूतन के सलाम सिंध समेत सजे मुल्क में अज इकठो योम दिफा योम शोदा मल्हायो पियो वञे। मज़ारे काय ते गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट की मज़ार कायद ते शानदार परेड। गार्ड जो जिम्मेवार संभाले वरतियों तकरीब के खिताब कंदे एयर वाइस मार्शल हसन फिसल पाक फिजया हर दुखी घड़ी में कौम के उम्मीदन से पूरा हमेशा पूरा लथो है। फिजाई हदन जो दिफा पाक फिजाया के मजबूत हथन में आए। हर दुखी घड़ी में पाक फिजाया पांजो खिदमतों पेश कयो आयन। योम दिफा ते नंढन तोड़ी वडन शहरन में सेमिनार तकरीबू कोठाए रैलियों कढ़ी वतन के दिफा लाय जान कुर्बान दींदड़ शहीदन गाजिन के भेटा पेश कई पी वे। सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा योम दिफा के मौके से पाक फौज के शहीदन के खिराज अकीदत पेश। सदर आसिफ अली जरदारी है 6 सेप्टेम्बर असा के कौमी तारीख में यादगार मकाम रखे तो।

असांखे गाज़िन ऐं शहीदनि जी अज़ीम क़ुर्बानी जी यादि ॾियारे थो। हीउ ॾींहुं असांखे मौक़ो फ़राहम करे थो त असां पंहिंजे अज़ीम सपूतनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश कयूं। अज़ीम सपूतनि 1965 में दुश्मन जे नापाक इरादनि खे नाकाम बणायो। 6 सेप्टेम्बर वारो जज़्बो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में ॿीहर निमाया थियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त 6 सेप्टेम्बर पाक फ़ौज जे बेमिसाल अज़म ऐं क़ुर्बानी जे यादि ॾियारे थो। क़ौम तर्फ़ां गाज़िन ऐं शहीदनि खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो। पाकिस्तान अमन इस्तेहकाम लाइ फ़ाल किरदारु अदा कंदो रहंदो। योम दिफ़ा जे मौके ते हथियारबंद फ़ौज जो शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत। ISPR पारां जारी कयल बयान मूजिबि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ़ ऐं एयर चीफ़ पारां शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश कयो वियो। हथियारबंदनि फ़ौज जे गाज़िन खे बहादुरी ऐं साबित क़दम रहण ते सलाम पेश कजे थो। 6 सेप्टेम्बर क़ौमी इताद जुरत बहादुरी अज़म जी लाज़वाल अलामत आहे। 6 सेप्टेम्बर 1965 ते पाकिस्तानी क़ौम वतन जे दिफ़ा लाइ दुश्मन जो मुक़ाबिलो कयो। शहीदनि जूं लाज़वाल क़ुर्बानीूं ईंदड़ नसल लाइ मशल रहा आहिनि। ISPR पारां जारी कयल पधिराईअ में चयो वियो आहे त पाकिस्तान खिते में अमुन ख़ुशहाली ऐं इस्तेहकाम चाहे थो। अमुन अमान जे गॾियल अज़म खे कमज़ोरी न सम्झो वञे। पाकिस्तान ख़िलाफ़ कंहिं बि अग्रहीअ जो फौरी ऐं फैसलाइतो जवाब ॾिनो वेंदो। KP जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सिक्योरिटी फोर्सिस जी कार्रवाई। 21 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि उत्तर वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दनि पाक अफ़गान सरहद खां दाख़िल थियण जी कोशिश कई। सिक्योरिटी फोर्सिस जी कामयाब कार्रवाईअ में 10 दहशतगर्द मारिजी विया। उत्तर वज़ीरिस्तान में हिक ॿी कार्रवाई में पाक अफ़गान सरहद भरिसां सिक्योरिटी फोर्सिस जे मौसर कार्रवाई में 7 ख़ारजियुनि खे जनम भेड़ो कयो वियो। कुवाट ऐं डेरा इस्माइल खान ज़िलनि में ॿिनि मुख़्तलिफ़ कार्रवाईनि में 4 ख़ारजी मारिजी विया। सदर ऐं वज़ीर आज़म पारां कामयाब कार्रवाई ते सिक्योरिटी फोर्सिस खे भेटा पेश। सदर आसिफ़ ज़रदारी चयो त पाकिस्तान जे सरहदुनि जो दिफ़ा ऐं दहशतगर्दीअ जो ख़ात्मो पहिरीं तरजीह आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ जंग में पूरी क़ौम सिक्योरिटी फोर्सिस सां गॾु आहे। वतन जे अज़ीम सपूतनि खे भेटा पेश करण लाइ मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं तक़रीबूं। सखर, मिठी, कंदकोट, सामारो, उॿाड़ो, टंडो आदम, टंडो गुलाम हैदर, तंगवाणी, जोई ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं कढी पाक फ़ौज जे शहीदनि खे भेटा पेश कई वई। इतिहादनि खे भलजां ख़ुशि करे पर सिंध खे क़ुर्बानीअ जो ॿकरो बणाइण खां पासो करे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण ख्वाजा आसिफ जे बयान ते रदअमल में चयो आहे त पंजाब असम्बली सिराइकी सूबे जे हक़ में 2 भेरा ऐं सिंध असम्बली सिंध में वधीक सूबा ठाहिण ख़िलाफ़ 8 भेरा ठहराउ मंज़ूर करे चुकी आहे। घोटकी भरिसां कार कल्टी थियण सबबि 4 ॼणा फोत। बाईपास ते टायर बरस थियण सबबि कार कल्टी थियण जे नतीजे में औरत समेत 4 ॼणा हयातियूं विञाए वेठा। फोतियुनि जी सुञाणप न थी सघी। मड़ इस्पताल मुंतकिल।

0: दुकान में फायरिंग एक जनों मार जी वयो। सुर्या मार्केट बरसा फायरिंग में 28 वरन जो चिराज मार जी वयो। संदस जो मर्ड अस्पताल मुंतकिल।
1: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

लाइन ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301 54 31 456 ऐं तौकीर अहमद 0306

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए, और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03003105109, 03005109।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 03013992836। मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
4: 03013992836।

वतन के अजीम सपूतन के सलाम सिंध समेत सजे मुल्क में अज इकठो योमे दिफा योमे शोदा मल्हाए पियो वञे। मज़ार काए गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट की मज़ार काए शानदार परेड। गार्ड जो जिम्मेवार संभाले वरतियों तकरीब के खिताब कंदे एयर वाइस मार्शल हसन फैसल त पाक फिजाया हर दुखी घड़ी में कौम की उम्मीद से हमेशा पूरो लथी है। फिजाई हदन जो दिफा पाक फिजाया के मजबूत हथन में आए। हर दुखी घड़ी में पाक फिजाया पांजो खिदमतों पेश कई आन। योमे दिफा ते नंढन तोड़ी वडन शहरन में सेमिनार तकरीबू कोठाए रैलियों कढ़ी वतन के दिफा लाए जान कुर्बान दींदड़ शहीदन गाजिन के भेटा पेश कई पई वे। सदर आसिफ जरदारी ए वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा योमे दिफा के मौके ते पाक फौज के शहीदन के खिराज अकीदत पेश। सदर आसिफ जरदारी है तो 6 सेप्टेम्बर असाजे कौमी तारीख में यादगार मकाम रखे तो। ये डी असा के गाजिन शहीदन की अजीम कुर्बानी की याद दियारे तो। ये डी असा के मौको फराहम करे तो असा पांजे अजीम सपूतन के खिराज अकीदत पेश क्यों। अजीम सपूतन 1965 में दुश्मन के नापाक इरादन के नाकाम बढ़ाया। 6 सेप्टेम्बर वारो जज्बो ऑपरेशन बुनियान मरसूस में बीहर निमाया थो। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो चवण है तो 6 सेप्टेम्बर पाक फौज के बेमिसाल अजम ए कुर्बानी की याद दियारे तो। कौम तरफा गाजिन शहीदन के खिराज तहसीन पेश क्या तो। पाकिस्तान

हमलाए पाल के दारदा कंदो रहंदो योमे दिफा जे मौके ते हथियारबंद फौज जो शहीदन के खिराज अकीदत पेश आईएसपीआर पारां जारी कयल बयान मूजिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नेवल चीफ एयर चीफ पारां शहीदन के खिराज अकीदत पेश कयो वियो हथियारबंद फौज जे गाज़िन के बहादुरी ऐं साबित कदम रहण ते सलाम पेश कजे थो 6 सेप्टेम्बर कौमी इताद जुरत बहादुरी अज़म जे लाज़वाल अलामत आहे 6 सेप्टेम्बर 1965 ते पाकिस्तानी कौम वतन जे दिफ़ा लाइ मुतहती दुश्मन जो मुक़ाबिलो कयो शहीदनि जूं लाज़वाल क़ुर्बानीूं ईंदड़ नसुल लाइ मशल रहा आहिनि आई एस पी आर पारां जारी कयल पधराई में चयो वियो त पाकिस्तान खिते में अमुन खुशहाली ऐं इस्तक़ाम चाहे थो अमुन अमान जे गडि॒यल अज़म खे कमज़ोरी न सम्झो वञे पाकिस्तान ख़िलाफ़ कंहिं बि अग्रहीअ जो फौरी ऐं फ़ैसिलाइतो जवाब ॾियणो पवंदो केपीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सिक्योरिटी फोर्सिस जी कार्रवाई 21 दहशतगर्द मारिजी विया आई एस पी आर मूजिबि उत्तर वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दनि पाक अफ़गान सरहद खां दाख़िल थियण जी कोशिश कई सिक्योरिटी फोर्सिस जी कामयाब कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारिजी विया उत्तर वज़ीरिस्तान में हिक ॿी कार्रवाई में पाक अफ़गान सरहद भरिसां सिक्योरिटी फोर्सिस जी मुयसर कार्रवाई में 7 ख़ारिजनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो कोहाट ऐं डेरा इस्माइल खान ज़िलनि में ॿिनि मुख़्तलिफ़ कार्रवाइयुनि में 4 दहशतगर्द मारिजी विया सदर ऐं वज़ीर आज़म पारां कामयाब कार्रवाई ते सिक्योरिटी फोर्सिस खे भेटा पेश सदर आसिफ़ ज़रदारी चयो त पाकिस्तान जे सरहदनि जो दिफ़ा ऐं दहशतगर्दीअ जो ख़ात्मो पहिरीं तरजीह आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ जंग में पूरी क़ौम सिक्योरिटी फोर्सिस सां गॾु आहे

0: नायब वजीर आजम इसहाक डार ए मिस्र के परडेही वजीर विच में टेलीफोनिक राबतो बतर इलाकई आलमी सलामती ते ख्याल की डेवट कई वही बिन्हीं अगवाणन पारा बिन्हीं तरफन का लागापा वधिक मजबूत बनाने के अजम जो वर्जाव कयो। कौम एफ बी आर के बदउनवान ऑफिसर के पाले रही है हुकूमत पांजी नाकस हुकुमरानी लिकायण लाए अवाम ते बार विजे थी। जमायत इस्लामी के सरबराह हाफिज नईम रहमान की मीडिया से गाल बोल हाफिज नईम अवाम के पैसों में रुगो कुछ मानों जो पेट भरियो पियो वञे आई पीस के बिजली जा पैसा दिना पिया वन जेके ठही न थी सके। शहबाज हुकूमत 4 अरब का वधिक लेवी वसूल कर चुकी है।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स्ड गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असावट जगह जो जारियों जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई 12 इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 आई तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003।
4: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद ठरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
5: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-04372 आई 0242-460100।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा। छो परेशान आई
7: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी।
8: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
8: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
9: 0301-399-2836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03008569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

केपीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सिक्योरिटी फोर्सेस जी कार्रवाई 21 खां जी दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब उत्तर वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दनि पाक अफ़गान सरहद खां दाख़िल थियण जी कोशिश कई। सिक्योरिटी फोर्सेस जी कामयाब कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारिजी विया। उत्तर वज़ीरिस्तान में हिक ॿी कार्रवाई में पाक अफ़गान सरहद भरिसां सिक्योरिटी फोर्स जे मौसर कार्रवाई में 7 खाजनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। कुवाट ऐं डेरा इस्माइल खान ज़िलनि में ॿिन मुख़्तलिफ़ कार्रवाइयुनि में 4 दहशतगर्द मारिजी विया। सदर ऐं दहशतगर्दीअ जो ख़ात्मो पहिरीं तरजीह आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ जंग में पूरी क़ौम सिक्योरिटी फोर्सेस सां गॾु आहे।

वतन के अजीम सपूतन के सलाम सिंध समेत समूरे मुल्क में अज एक योम दिफा योम शोदा मल्हायो पियो वञे। नंढन तोड़ी वॾन शहरन में सेमिनार तकरीबू कोठाए रैलियूं कढी वयूं। वतन के दिफा लाए जान कुर्बान डींदड़ शहीद गाजिन के भेटा पेश कई वही। सदर आसिफ अली जरदारी वजीर अजम शहबाज शरीफ पारा योम दिफा के मौके पाक फौज के शहीदन के

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: असली चीज जान चारों मसालों की सुनियाण पर ट्रेडमार्क नंबर चोटी 2000 डीसी करे खरीद कंदा। जी जान चारों मसालो ढोर जो हाजमो दुरुस्त। जी जान चारों मसालो ढोर सेहतमंद। जी जान चारों मसालो। जी जान चारों मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवर जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109, 03000-3105-109।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते दे लाए 03201800003।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03000338569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बहरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: अरिजोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: मिस्र ऐं पाकिस्तान पारां इस्लामाबाद मफ़ामत यादाश्त नामे ते अमल दरामद ते ज़ोर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं मिस्र जे परॾेही वज़ीर विच में टेलीफोनिक राब्तो बेतरफ़े सहकार इलाक़ाई ऐं आलमी सलामतीअ ते ख़्यालनि जी ॾे कई वई पाकिस्तान ऐं मिस्र पारां सफारती कोशिशूं तेज़ करण ते ज़ोर बणाइण जी दावा ईरान पासदारनि इनकलाब जी बहिरियां दावा कई आहे त अबना हुर्मुस मां गुज़रण ते टिनि अमरीकी आयल टैंकर्स ऐं टिनि बहिरी जहाज़नि खे निशानो बणायो वियो

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न? अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
6: 03013992836।
7: अपना शहर अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: दुश्मन के लिए तबाही। पाक फौज का हर सिपाही 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम।
1: सोनी अज तो ढी खुश थी लगे।
2: हाँ साईं, गाल भी एड़ी आहे।
1: भला मुखे भी बुदाए केड़ी गाल आहे।
2: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
1: छा छा?
2: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। हिय चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे तो, ढोर सेहतमंद थियन ता, गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे तो।
1: वाह सोनी वाह, वाह जी गाल बुधाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
2: साईं रेडीए थे ता बुधाइन बुद्ध अजी वठी अच।
1: मां हाणे ई तो वञा त जी असी भी खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
2: हा साईं हा।
0: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120 आप सुन रहे हैं GAFM नेटवर्क पर योम दिफाए पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया पाक फौज को सलाम।

0: आप सुन रहे हैं जीए एफएम नेटवर्क पर योम दिफाई पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया पाक फौज को सलाम।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

9 मई केस में इश्तिहारी करार डिनल पीटीआई अगवान हमाद अज़हर मुल्तान मां गिरफ्तार। मुल्तान पुलिस हमाद अज़हर के लाहौर पुलिस हवाले कर छो। हमाद अज़हर 9 मई वारन केसन में घुर्बल हो। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकन में कार्रवाई 21 खारजी दहशतगर्द मारजी वाया। आईएसपीआर मूजिब उत्तर वजीस्तान में दहशतगर्दन पाक अफगान सरहद का दाखिल थियण की कोशिश कई। सिक्योरिटी फोर्सिस की कामयाब कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारजी वाया। उत्तर वजीस्तान में ही एक बी कार्रवाई में पाक अफगान सरहद भरसा सिक्योरिटी फोर्सिस की मौसर कार्रवाई में 7 खारजी मारजी वाया। कोहाट ए डेरा इस्माइल खान जिलन में भी बिन मुख्तलिफ कार्रवाई में 4 खारजी दहशतगर्दन के मारे वो। सदर ए वजीर आजम पारा कामयाब कार्रवाई से सिक्योरिटी फोर्सिस के भेटा पेश। सदर आसिफ जरदारी चयो तो पाकिस्तान की सरहदों को दिफा ए दहशतगर्दी को खात्मो पहरी तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ चवण हो तो दहशतगर्दी खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सिस से गड बीठल है।

वतन जे अज़ीम सपूतन खे सलाम। सिंध समेत सॼे मुल्क में अॼु 61 योम दिफ़ा ऐं योम शहदा मल्हायो पियो वञे। नंढनि तोड़े वॾनि शहरनि में सेमिनार, तकरीबूं, कोठाए ऐं रैलियूं कढी वतन जे दिफ़ा लाइ जान क़ुर्बान कंदड़ शहीदनि ऐं गाज़ियुनि खे भेटा पेश। सदर आसिफ ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म पारां योम दिफ़ा जे मौक़े ते पाक फ़ौज जे शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश। सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त 6 सेप्टेम्बर असांजी क़ौमी तारीख़ में हिकु यादगार मक़ाम रखे थो। ही ॾींहुं असांखे गाज़ियुनि ऐं शहीदनि जी अज़ीम क़ुर्बानीनि जी यादि ॾिराए थो। वज़ीर आज़म जो चवण हो त 6 सेप्टेम्बर पाक फ़ौज जी बेमिसाल अज़म ऐं क़ुर्बानीनि जी यादि ॾिराए थो। क़ौम तरफ़ां गाज़ियुनि ऐं शहीदनि खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो। पीपी चेयरमैन चयो त वतन लाइ जान ॾींदड़ वतन जे बहादुर सिपाहियुनि खे क़ौम कॾहिं बि न विसारींदी। योम दिफ़ा ते मज़ार क़ाइद ते गार्ड जी तब्दीली जी तक़रीब, पाकिस्तान एयरफोर्स जे कैडेट्स जे मज़ार क़ाइद ते शानदार परेड, गार्ड्स जूं ज़िमेवारियूं बि संभाले वरितियूं। तक़रीब खे ख़िताब कंदे एयर वाइस मार्शल हसन फैसल चयो पाक फिज़ाइया हर ॾुखी घड़ीअ में क़ौम जी उमेदनि ते हमेशह पूरो रथी आहे। फिज़ाई हदनि जो दिफ़ा पाक फिज़ाइया जी मज़बूत हथनि में आहे। हर ॾुखे वक़्त में पाक फिज़ाइया पंहिंजूं ख़िदमतूं पेश कयूं आहिनि। योम दिफ़ा जे फ़ौज जो शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत। SPR पारां जारी कयल बयान मूजिबि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, नेवल चीफ ऐं एयर चीफ पारां शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश कयो वियो। हथियारबंद फ़ौज जे गाज़ियुनि खे बि बहादुरी ऐं साबित क़दम रहण ते सलाम पेश कजे थो। 6 सेप्टेम्बर क़ौमी इतिहाद, जुरत, बहादुरी ऐं अज़म जे लाज़वाल अलामत आहे। 6 सेप्टेम्बर 1965 ते पाकिस्तानी क़ौम वतन जे दिफ़ा लाइ मुतहदी दुश्मन जो मुक़ाबिलो कयो। शहीदनि जूं लाज़वाल क़ुर्बानीूं ईंदड़ नसुल

दिफा के शहीदन के दिहाड़े के मौके से मलीर गिरेजन में तकरीब वडे वजीर मुराद अली शाह कोर कमांडर कराची समेत सिंध रेंजर्स पुलिस के आला ऑफिसर की शिरकत वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह कोर कमांडर शहीदन के यादगार से गुलन की चादर चाढ़ी फातिहपानी भी कई दुआ भी घुरी। तकरीब दौरान पाक फौज की चाक चौबंद दस्ते पारा शहीदन की यादगार से सलामी पेश कई वही। शहीदन के वारसन से वडे वजीर ए कोर कमांडर की मुलाकात शहीदन की बेमिसाल कुर्बानी से खराज तहसीन पेश। कौम एफ बी आर की बदउनवान ऑफिसर के पाले रही है। हुकूमत पंजी नाकिस हुकुमरानी लिखाने लाए अवाम ते बार विछे थी। जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गाल्ह बोल कंदे चयो है त अवाम के पैसन से रुगो कुछ मानुन जो पेट भरियो पियो वञे

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM नेटवर्क पर योम दिफाई पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया। पाक फौज को सलाम।

0: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
1: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000 310509 0300 510509।
3: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 0242460100।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: दुश्मन के लिए तबाही, पाक फौज का हर सिपाही, 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मीरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुख्य मुझी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

अपने नए सुनने वालों को मैं जरूर अपना तारुफ करवाऊंगी जो जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम सुना है और जो पहले सुन चुके हैं वो तो पहचान ही गए होंगे। अच्छा जीता जनाब, आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अच्छा सा प्रोग्राम, अच्छा सा कहते हैं ना कि रिश्ता जो

आप लोगों के साथ फिर से एक बार प्रोग्राम आवाज का रिश्ते में। अच्छा जी जनाब, तो आज का मुझे खुशी है कि मेरा पहला प्रोग्राम है आवाज का रिश्ता आप लोगों के साथ, जो एक नया रिश्ता जुड़ चुका है आज से। तो मेरा उसका सबसे पहला आज का मेरा जो प्रोग्राम है वो है 6 सितंबर के हवाले से ही, क्योंकि आज का दिन आप सबको पता है कि 25 तारीख का अहम दिन है। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख में लिखा हुआ ये दिन, इस दिन क्या हुआ था और पूरी दुनिया ने इस दिन पाकिस्तान की नौजवानों की हिम्मत, बहादुरी और शजाअत की तारीफ की थी। तो थोड़े से आज जो है मैं अपने मुल्क के नौजवान, अफवाज पाकिस्तान और जिस प्लेटफॉर्म पे भी हमारी जो है अफवाज जहाँ भी पाकिस्तान का डिफेंस कर रही है, वहाँ की आवाम का डिफेंस कर रही है, तो आज की शाम आवाज़ के रिश्ता में उनके नाम करना चाह रही हूँ। तो आप सब भी उन शहदाओं के जो शहीद हुए थे आज के दिन, उनके लिए खुशी दुआ कीजिएगा, क्योंकि ये दिन कोई आम दिन नहीं है तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का, बल्कि दुनिया की तारीख में देखा जाता है।

तो जी जनाब, आप लोग सुन रहे हैं मैडम तरन्नुम नूर जहाँ की आवाज़ में राह हक के शहीदों। बहुत अच्छा सा ये नगमा है और इसके लिए कहा जाता है कि उन्होंने ये महास पे जाकर गाया था। इस पर हमारे फतेह पाकिस्तान को और भी जोश आता था और इसको जितना सुनो ना उतना

क्या जी जनाब, आप लोग सुन रहे हैं आवाज के रिश्ते में, मैडम नूरशाह की आवाज में ये था. और ये हमारा जब जब हम इस तरह के नगमे सुनते हैं तो यकीन है जब हमारा ही खून जोश मारता है अपने वतन के लिए, तो फिर जो वहां पर खड़े होते हैं जो वतन के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए कैसे नहीं होगा. और ये वो दिन है जब मतलब कि उन माओ को भी आज मैं सलाम की थी जिन्होंने ऐसे बेटों को जो है जन्म दिया, उनकी तरबियत करी और उन्हें मुल्क की खिदमत के लिए, हिफाजत के लिए सरहदों पर भेजा. और उन बहनों को, उन भाइयों को, उन बेटों को जिनके वाले साहब इसमें शहीद हो गए, वो बाप जो जिन्होंने अपने बच्चों को यतीम कर दिया अपने वतन के लिए, उन सबको सलाम है. उस घराने को भी सलाम हमें करना चाहिए. हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल हैं ये हस्तियाँ, ये लोग. अगर ये उस वक्त अपनी जान का नजराना नहीं देते तो हम शायद आज ऐसे ना होते.

0: सचल की सरमस्त धरती
1: फातिये मेहरान।
2: आप सुन रहे हैं जीए एफएम नेटवर्क पर योम ए दिफाए पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया। पाक फौज को सलाम।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120।
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: दुश्मन के लिए तबाही, पाक फौज का हर सिपाही 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान पाक फौज को सलाम।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
3: मुजे दुकान जी बेड हलंदी।
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अमन मेमन 0301-380-8347।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
7: शाम 7 बजे तक आज कॉमल आप लोगों के साथ ही रहेगी। और सबसे पहले हम बात कर रहे थे आज के दिन के हवाले से, 6 सितंबर के हवाले से, 1965 की जो पाकिस्तान की जंग थी जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे तो कुछ गाजी हुए थे तो जी बिल्कुल, और कुछ लापता भी हुए थे तो जी इंशाल्लाह मौका मिले तो फिर इस पर भी बात करेंगे। आज मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ कि एक के मतलब मुझे आप लोग ज़रूर ये कमेंट्स करें और मैसेज फेसबुक पे आप तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग मुझे 8881 पर लाजमी मैसेज करें, 8881 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना जो भी की बात आप शेयर करना चाहते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ।

जब नाम पुकारे जाएंगे तो मैं भी तो पुकारा जाऊंगा जी, बिल्कुल पुकारे जाएंगे। और आज इनके नाम पुकारे नहीं जाते बल्कि दिलों में जिंदा हैं।

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: فاتح مہران.
2: جدید سہولتوں

बिन फरहान ऐं तुर्क परडे॒ही वज़ीर आकान फैदान मका मुआहिदे कमेटीअ जे इजलास बाबति ॻाल्हि ॿोल कई। पाकिस्तान ऐं मिस्र पारां सफ़ारती कोशिशूं तेज़ करण ते बि ज़ोर। मिस्री परडे॒ही वज़ीर सां ॻाल्हि ॿोल दौरान इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे ते अमल दरामद ते बि ज़ोर भरियो वियो। बेतरफ़ी सहकार इलाक़ाई ऐं आलमी सलामतीअ ते ख़्यालनि जी बि ॾे वठि कई वई। पाकिस्तान ऐं मिस्र पारां सफ़ारती कोशिशूं तेज़ करण ते बि ज़ोर भरियो वियो।

गज़ा वालल फलस्तीनी इलाइक़े जो हिसो आहे मुनसफ़ाणी ऐं हुन जो वाहिद रस्तो ब रियासती हल आहे। फलस्तीनियुनि खे बेदख़ल करण जूं कोशिशूं खिते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम खे नुक़सान पहुचाए सघनि थियूं। इसराइली वज़ीरनि पारां फलस्तीनियुनि जी गज़ा मां नेकाली ते पाकिस्तान समेत 8 मुल्कनि जी मज़म्मत। गॾियल पधराई में ॼाणायो वियो आहे त फलस्तीनियुनि जी जबरी बेदख़ली जी कोशिश खे रद्द कयो वञे थो। अहिड़ी कोशिश आलमी कानून जी भञकड़ी आहे। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्किया ऐं गॾियल अरब अमारातुनि पारां गॾियल पधराई जारी। नव में केस में इश्तिहारी करार ॾिनल पीटीआई अॻवान हमाद अज़हर मुल्तान मां गिरफ़्तार। मुल्तान पुलिस हमाद अज़हर खे लाहौर पुलिस हवाले करे छॾियो। हमाद अज़हर 9 मई वारनि केसनि में घुरबल हो।

वतन जी अजीम सपूतन के सलाम। सिंध समेत मुल्क में अज इकहठो योम दिफा ए योम शोदा मल्हायो पियो वञे। नंढन तोड़े वॾनि शहरनि में सेमिनारूं तकरीबूं बि कोठायूं वयूं। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां योम दिफा जे मौके ते पाक फ़ौज जे शहीदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश। सदर आसिफ ज़रदारी चयो त 6 सेप्टेम्बर असांजे क़ौमी तारीख़ में हिकु यादगार मक़ाम रखे थो। हीउ ॾींहुं असांखे गाज़ियुनि ऐं शहीदनि जे अज़ीम क़ुर्बाननि जी यादि ॾिराए थो। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त 6 सेप्टेम्बर पाक फ़ौज जी बेमिसाल अज़म ऐं क़ुर्बाननि जी यादि ॾिराए थो। क़ौम तरफ़ां गाज़ियुनि ऐं शहीदनि खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो। बिलावल भुट्टो चयो त वतन लाइ जान ॾींदड़ वतन जे बहादुर सिपाहियुनि खे कॾहिं बि क़ौम न विसारींदी। योम दिफ़ा ते मज़ार क़ाइद ते गार्ड्स जी तब्दीली जी तक़रीब। पाकिस्तान एयरफोर्स जे कैडेट्स जी मज़ार क़ाइद ते शानदार परेड। गार्ड्स जूं ज़िमेवारियूं बि संभाले वरितियूं। तक़रीब खे ख़िताब कंदे एयर वाइस मार्शल हसन फैसल चयो त पाक फिज़ाइया हर ॾुखे घड़ीअ में क़ौम जी उमेदनि ते हमेशह पूरो लथी आहे। फिज़ाई हदुनि जो दिफ़ा पाक फिज़ाइया जे मज़बूत हथनि में आहे। हर ॾुखी घड़ीअ में पाक फिज़ाइया पंहिंजूं ख़िदमतूं पेश कयूं आहिनि। योम दिफ़ा

मौके ते हथियारबंद फौज जो शहीदन के खराज अकीदत ISPR पारा जारी कल बयान मूजिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नेवल चीफ एयर चीफ पारा शहीदन के खराज अकीदत पेश कयो वयो। हथियारबंद फौज की गाजिन के बहादुरी ए साबित कदम रहन ते बे सलाम पेश कजे थो। 6 सेप्टेम्बर कौमी इतिहाद जुरत बहादुरी ए अजम की लाजवाल अलामत है। 6 सेप्टेम्बर 1965 ते पाकिस्तानी कौम वतन की दिफा लाए मुतहद थी दुश्मन जो मुकाबलो कयो। शहीदन जो लाजवाल कुर्बानियों इंदड़ नसुल लाए मशले राह आहिन।

0: दिफ़ा जे शहीदनि जे ॾिहाड़े जे मौके ते मलीर गिरिजन में तकरीब, वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह, कोर कमांडर कराची समेत सिंध रेंजर्स ऐं पुलिस जी आला आफ़िसरनि जी शिरकत। वॾे वज़ीर ऐं कोर कमांडर शहीदनि जी यादगार ते गुलनि जी चादर चाढ़ी फातिह पानी कई ऐं दुआ घुरी। तकरीब दौरान पाक फ़ौज चाक ऐं चौबंद दस्ते पारां शहीदनि जी यादगार ते सलामी पेश कई वई। शहीदनि जे वारसनि सां वॾे वज़ीर ऐं कोर कमांडर जी बि मुलाक़ात। शहीदनि जे बेमिसाल क़ुर्बानीनि ते ख़िराज तहसीन पेश।
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दुश्मन के लिए तबाही। पाक फौज का हर सिपाही 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 310509 0300 5109।
4: मालवन भारन लाए खुशखबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो, जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए अम्हा के खुशहाल बनाए, हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब है।
5: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 0320180003।
6: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेहरापुर। असां वटि जॻहि जूं ॾियारियूं, जॻहि जा पावा ऐं पाइप, 1.5-4-6-9-12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम, 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद, 0306-1623-793।
7: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
8: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
7: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
8: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 and 0242460100।
2: आप सुन रहे हैं GAFM नेटवर्क पर यौमे दिफाए पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया। पाक फौज को सलाम।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

0: आई अदी अज त डाडी खुश पई नजर अची
1: छो न खुश थिया अदी जदे खा मुजे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार ईणी थी वई आहे ऐ हाणे पैसा भी ईणा था अचन ही दिस सोनियो चोणियो
0: मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरन खे सखर वारनि जो चारो मसालो ई खाराए
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
2: आप सुन रहे हैं GAFM नेटवर्क पर योमे दिफाए पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया पाक फौज को सलाम

0: कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफो बीहर अमां सभिनी खे खुश आमदी चऊं था। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमून साहब ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851। डॉक्टर साहब जो एड्रेस ऐं टाइम आहे, डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपुटा पेट्रोल पंप कोटरी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। ऐं नोट अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं हिन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे। डॉक्टर साहब कॉल जी तरफ़ हलंदासीं, वधीक इंतज़ारु नथा करियूं कॉलर्स खे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। अदा केरु ऐं किथां खां? फ़क़ीराबाद खां। छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां? अच्छा ठीकु आहे, मूंखे ॿुधाए थो डॉक्टर साहब, रेडियो ॿुधो।
1: ठीकु आहे
0: जी सर।
2: मुबतला हूंदा आहिनि उन हवाले सां, हिकु त चांहि जो इस्तेमालु घटि करिणो आहे, तरियल शयूं खटी शयूं ऐं चांवर जो इस्तेमालु बंदि करिणो आहे, ऐं पपीतो इस्तेमालु कयो ऐं काफ़ी फ़ाइदो पइजी वेंदो आहे, ऐं उन खां पोइ आलू बुखार जेके ख़ुश्क हूंदा आहिनि उहे चूसण सां बि काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे, या सौंफ चूसण सां बि काफ़ी जेको मैदे जा अमराज फ़ाइदो पइजी वेंदो आहे। लेकिन जी बहितरीन मुकमल हल जेको आहे न सो होम्योपैथिक दवा में आहे। होम्योपैथिक दवा अव्हांखे ख़बर आहे त जेको आहे सो बेज़र हूंदी आहे, को साइड इफ़ेक्ट न हूंदो आहे। मेडिकल में माण्हू हिकिड़ो ई क़िस्म जो को कैप्सूल या अहिड़ी का दवा रेगुलर खाईंदो ईंदो आहे, ऐं उहे दवाऊं जेको आहे इन जा एतिरा सारा साइड इफ़ेक्ट आहिनि जो माण्हुनि जो कैल्शियम ख़तमु थी थो वञे, हॾनि ते असरात अची वञनि था, गुर्दनि ते असरात अची वञनि था, जिगर ते असरात पइजी वञनि था। इन जे करे उहा इन्हनि शयुनि खां जेको आहे सो ख़ालसतन बचो, ऐं कुदरती शयुनि जी तरफ़ जी मां ॻाल्हि कई, सौंफ़ तमामु बहितरीन, सौंफ़ ऐं जीरो तव्हां जेको आहे सो काढ़े पाणीअ में पी सघो था, उहो काफ़ी फ़ाइदो तव्हांखे ॾेई सघे थो। सौंफ़ ईअं तव्हां खाईंदा आहियो ईअं काफ़ी जेको फ़ाइदो पइजी वेंदो आहे। पुदीना हिकिड़ो फूदिनो जंहिंखे चवंदा आहियूं त उहो तमामु हिकिड़ो इन जे लाइ तमामु बहितरीन आहे। फूदिने जो शरबत थींदो आहे उहो तव्हां पी सघो था जेको आहे सो, ऐं अहिड़ियूं शयूं जेके नुक़सान ॾियनि थियूं ऐं उहो तव्हां उनखे बंदि करे छॾियो, ऐं पंहिंजो खाइण पीअण जो जेको रूटीन आहे, लाइफ स्टाइल पंहिंजो आहे, उनखे थोरो चेंज कयो। यानी हिकिड़ो राति जो देरि सां मानी न खाइणु घुरिजे, घटि में घटि शाम जो माण्हू 7-8 बजे जेको आहे सो यानी राति जी मानी खाए त जीअं उहा हज़म थिए ऐं माण्हू जेको आहे सो सुम्ही सघे सही तरीक़े सां, ऐं सही तरीक़े सां उहो जेको आहे सो मादो उनखे एक्सेप्ट कंदो आहे। खीर बि राति जो जेको आहे सो घटि में घटि खीर बि पंहिंजो हज़म करण लाइ 2 कलाक वठंदो आहे, इन जे करे खीर बि अहिड़े तरीक़े सां तव्हांखे देरि सां नाहे पीअणो। घणा माण्हू राति जो निंड मां उथी करे खीर पीअंदा आहिनि, या इहो बि तमामु हिकिड़ो ग़लति हूंदो आहे। चांहि जो इस्तेमालु घणो हूंदो आहे, स्मोकिंग हूंदा आहिनि, त इहो मादे खे नुक़सानु जेको आहे सो थिए थो। ऐं दवाऊं जेके मां होम्योपैथिक जो ॿुधायूं त उन में इहो आहे जो माना माण्हू अॻिते हली जेकॾहिं उनखे छॾे पियो वञे थो त आदि कोन थो थिए, सो होम्योपैथिक दवा इस्तेमालु कंदा कयो। असांजी क्लिनिक ते तव्हां कहिड़े बि टाइम ते अची सघो था, महिरबानी।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमून साहब, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति असांखे ॼाण ॾींदा आहिनि। ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851, 0301-2196-851। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कंदा आहिनि। संदनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुनरक जो सूरु, नक, कन, गलो, पुराणो, नज़लो, निछूं, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फाल जी खंघ, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, दिली जो वधण, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल बि ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-851। डॉक्टर साहब, हर अरबा खमीस जुमे छंछरु आचे सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटरी रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। कॉल जी तरफ़ हलंदासीं, ॾिसूं था केरु लाइन ते आहे मौजूदु। अस्सलाम वालेकुम। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, कुझु लिसनर्स अहिड़ा हूंदा आहिनि कॉल करे मतिलबु इलाज आहे असांजो बि टाइम ज़ाया कंदा आहिनि, ऐं तव्हां बि चयो पहिरियां त उनखे कॉल करण ईंदा जंहिंजो मक़सदु हूंदो आहे कॉल जो, या को मरीज़ हूंदा आहिनि का ॻाल्हि पुछणु चाहींदा आहिनि त महिरबानी करे उन्हनि खे कॉल करण जो मौक़ो ॾींदा कयूं।
2: जी साईं, बिल्कुलु। ऐं इहा ॻाल्हि मां प्रोग्राम जी शुरूआत में करियमि त अहिड़े क़िस्म जा असां अॼुकल्ह पंहिंजे मोबाइल में हिकु ऐप इस्तेमालु कंदासीं।
0: जी जी साईं।
2: जिन सां उन्हनि जा नंबर्स अची वेंदा आहिनि, उहे हमेशह जे लाइ हिकु त ब्लॉक थी वेंदा, ऐं असांजी मथीं एजेंसी हूंदी आहे उन ॾे उहे नंबर थी वेंदा।
0: बिल्कुलु सर।
2: जीअं माण्हू आई

0: असीं बिल्कुल देखे ई चवंदासीं कोशिशि कयो त जे कज़न घणो पोइ फ़र्क़ु हूंदो चई सघो था वारा जे टाइम ॾे ऐं उनमें बि जेको आहे हेठि आहे उन सां जो ॾेखारींदो पइजी वेंदी त उनजे हवाले थी वॾी महिरबानी
1: ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु डॉक्टर साहबु हर अरबा खमीस जुमे छंछरु आचारु ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि अंग हिकु बंदि हूंदी आहे असां 0301 ॿी ॻाल्हि जी तरफ़ जी अदा छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां लेकिन रूबरू ॾेखारींदो त वधीक बहितर थींदो ठीकु आहे रेडियो ॿुधो डॉक्टर साहब ॿुधाए थो जी सर
0: जी साईं बिल्कुलु ही अहिड़ी क़िस्म जी तकलीफ़ टी या बज़लो हुजे जो तव्हां में पथरी आहे ऐं उहा मेडिकल में हुनजो हल आपरे बि तक़रीबन उहो बि पेशंट जो अल्ट्रासाउंड थियल भरू ॾिसी करे त उनमें ॾिसिबो त उनखे केतिरी एम एम जी पथरी उन हिसाब सां छा पोज़िशन आहे जेको आहे सो ऐं कॾहिं उनखे ब्लड प्रेशर जी कमी उन हिसाब सां तकलीफ़ हिकिड़ी हुई त सो तव्हां सुभाणे रूबरू पेशंट खे वठी अची ऐं अल्ट्रासाउंड बि खणी ॾेखारे वञो वॾी महिरबानी
1: सेहत जी ॻाल्हि में डॉक्टर जो डॉक्टर साहिबु जो नोट कंदा डॉक्टर साहिबु हर अरबा खमीस जुमे छंछरु आचारु ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि हिन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछरु आचारु ऐं चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे बाक़ी दवा मरीज़नि खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे डॉक्टर साहबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टरनि जिन में संदनि जोड़नि गोॾनि जो सूरु कुन रग जो सूरु नक किन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूरु अधु मथे जो सूरु नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहणु घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ टी बी मैदे जो सूर मैदे जी जिगर हेपेटाइटिस बी सी गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरणियूं ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि प्रोग्राम जो नंबर आहे कॉल करे ऐं कंहिं बि बीमारी बाबति

0: डॉक्टर साहब हर बार खमीस जुमे छंछर आचार्य सूमर से सुबह 10 खां शाम 5 वगे तक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधनपोटा पेट्रोल पंप कोटरी रोड मरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा असाने प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था असाने लाइव कॉल जो नंबर है 0301-9196-851 जी सर ये सर चेकअप फीस होंगी है 3 दिन या सर हमारी कंपनी बर्दाश्त करती है या
1: जी सर बिल्कुल चेकअप फीस फ्री जो है सो असो तरफ है जर्मन होम्योपैथिक की तरफा जो है सो पेशेंट्स के लिए खास एक रिलीफ होंद है जो अस मरीजन के पे हिसाब से दींदा अच्छा इन प्रोग्राम के तौर से असाजा पेशेंट्स जो हूँ उनके होम्योपैथिक दवाओं के इस्तेमाल जो तरीको जो उनके बार बार समझाइंदा बुधंदा बुधाइंदा भी आयो पर खास करके के पेशेंट्स ये हूँ जो सही तरीके से दवा के इस्तेमाल न कंदा या उन्होंने तरीक़ेकार जो खबर मरीजन के न हों जैसे करे भी पो या दवा उनके जो है सो उन मरीजन के यानी दवा असर न कंदी है जैसे इस्तेमाल तरीको सही न हों यानी एक गाल असा जी सही कॉल
0: सर कॉल पे से तवाज मौजूद कंटिन्यू कंदा से लेकिन इनका पहले एक कॉल आए अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: केरे किथा खादा
2: सही नजवली खास की गाल है रोशा अल्लाह खा रोड को
0: छा पूछन चाहिदा डॉक्टर साहब का
2: सर असा जी मामी

0: पइजी था वञनि त उन में हज़ारे जरासीम अची वेंदा आहिनि। जेके अवां खाधो खाओ था उहे अवां सां गॾु मुंह में उन बैक्टेरिया उहे मुंहं में जेको आहे वात में खाधे सां गॾु हलिया वञनि था, त उहे अव्हांजे पेट जा जेके बि तव्हां ॾिसो अॼुकल्ह पेट जूं बीमारियूं आहिनि, तकलीफ़ आहिनि, इहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असांजी इन नंढड़ियुनि नंढड़ियुनि ग़लतियुनि जे करे बि जेको आहे। टाइम तमामु थोरो आहे, सो पछाड़ी में दुआ में ज़रूरु यादि रखिजो। वॾी महिरबानी।
1: असांजे अॼोके प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो बि वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो ऐं ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान एहसान अली सियाल खे। अलाह हाफ़िज़।

नव मई केस में इश्तिहारी करार डिनल पीटीए अगवान हमाद अजहर मुल्तान मां गिरफ्तार। मुल्तान पुलिस हमाद अजहर के लाहौर पुलिस हवाले कर छोड़ो। हमाद अजहर नव मई वाले केसन में घुर्बल हो।

वतन के अजीम सपूतन के सलाम। सिंध समेत सजी मुल्क में अज इकठो योम दिफा ए योम शोहदा मल्हाए पे वे। नंढन तोड़े वन शहर में सेमिनार तकरीबू कोठाए रैलियो कढ़ी वतन के दिफा ला जान कुर्बान कंदड़ शहीद ए गाजन के भेटा पेश कई वही। सदर आसिफ जरदारी ए वजीर आजम पारा योम दिफा के मौके से पाक फौज शहीद के खराज तहसीन पेश। सदर चयो तो 6 सेप्टेम्बर असां जी कौमी तारीख में यादगार मुकाम रखे तो। ये ढी असा के गाजन ए शहीद की अजीम कुर्बानन की याद दिलाए तो। वजीर आजम शाहबाज शरीफ जो चवण हो तो 6 सेप्टेम्बर पाक फौज की बेमिसाल अजम ए कुर्बानन की याद दिलाए तो। कौम तरफा गाजन ए शहीद के खराज तहसीन पेश कया तो। पाकिस्तान अमुन इस्तेहकाम लाए फाल किरदार अदा कंदो रहंदो। बिलावल भुट्टो चयो तो वतन ला जान दींदड़ वतन के बहादुर सिपाहियों के कदें भी कौम न विसारींदी। योम दिफा ते मज़ार कायद ते गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स की मज़ार ते शानदार परेड। गार्ड्स जो जिम्मेवारियों भी संभाले वरतियों। तकरीब के खिताब कंदे एयर वाइस मार्शल हसन फैसल चयो पाक फिजाइया हर डुखी घड़ी में कौम की उम्मीदन ते हमेशा पूरो लथी आए। फिजाई हदन जो दिफा पाक फिजाइया की मजबूत हथन में है। हर डुखी घड़ी में पाक फिजाइया पांजो खिदमतू पेश कयूं आहिन। योम दिफा के मौके से हथियारबंद फौज जो शहीद के खराज अकीदत। ISPR पारा जारी कल बयान मूजिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नेवल चीफ ए एयर चीफ पारा शहीद के खराज अकीदत पेश कर वो। हथियारबंद फौज के गाजन के बहादुरी ए साबित कदम रहने से भी सलाम पेश कर वो। 6 सेप्टेम्बर कौमी इतिहाद जुरत बहादुरी अजम के लाजवाल अलामत करार। 6 सेप्टेम्बर 1965 से पाकिस्तानी कौम वतन की दिफा लाए मुतहद थी दुश्मन के मुकाबलो किया। शहीदन जो लाजवाल कुर्बानियों इंदड़ नसुन लाए मशल राह आहिन। ISPR पारा जारी कल पत्राए में चयो है तो पाकिस्तान खिते में अमुन खुशहाली ए इस्तेहकाम चाहे तो। अमुन अमान की गडियल अजम के कमजोरी न समझो वे। पाकिस्तान खिलाफ कें भी अगराई जो फौरी ए फैसला तो जवाब दिनो वो। दिफा ए शहीद के दिहाड़े के मौके से मलिर ग्रेजन में तकरीब। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह कोर कमांडर कराची समेत सिंध रेंजर्स ए पुलिस के आला ऑफिसर की शिरकत। वडे वजीर ए कोर कमांडर शहीद की यादगार से गुलन की चादर चाढ़ी फातिह फानी भी कई ए दुआ भी घुरी। तकरीब दौरान पाक फौज चाक ए चौबंद दस्ते पारा शहीद की यादगार से सलामी पेश कई वही। शहीद के वारसन से वडे वजीर ए कोर कमांडर्स की मुलाकात।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: माशाल्लाह फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री का

0: दुश्मन के लिए तबाही, तबाही। पाक फौज का हर सिपाही, हर सिपाही। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301 91 896

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ, आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आप सुन रहे हैं GAFM नेटवर्क पर योम दिफाई पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया, पाक फौज को सलाम।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सकंदा सिंध हिक रहंदी को भी हिस्सो धार या वफाक हवाले न थींदो। सिंध असेंबली मां नवनि सूबनि ऐं यूनिटनि ख़िलाफ़ु ठहिरा मंज़ूर, मुतहदा जो वॉकआउट। सिंध में स्ट्रीट क्राइम रोकण लाइ हिकमत अमली तयारु, एस एस पी खां आदि रुहारनि जो रिकॉर्ड तलब। सिंध में रबीअ जी मुंद दौरान आबादगारनि खे डी ए पी भाण ते सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो। पीपल्स पार्टी जो 12 सेप्टेंबर ते सॼे सिंध में सिंध धरती माउ आहे जे उनवान सां रैलियूं कढण जो ऐलान। मेरठ जी लताड़ ख़िलाफ़ एहतजाज कंदड़नि ख़िलाफ़ धमकियूं, सूमर ते हर हाल में मार्च थींदो अॻवाण। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा सिंध जी वहदत, वफ़ाक़ जी मज़बूती ऐं क़ौमी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जी ज़रूरत आहे।

सिंध असेंबली सिंध के मौजूदा इलाकन सरजमीन तालकन जिलन डिवीजनों के सिंध जो अणटड़ हिस्सों करार दे सिंध की वहदानियत के कें किस्म के विरहगे के मुकम्मल रद्द कदे वादे है सिंध के विरहण उन मौजूदा इलाकई हदू तब्दील करनी है सिंध की सरजमीन में को नव सूबो कायम कर पेश कल हर तजवीज मनसूबे स्कीम या आइनी बंदोबस्त के उन नालो या नोयत कुछ भी हुए ऐवान उन रद्द करे तो पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार कड़ो पारा पेश कल ठहरा अक्सर ते राय सा मंजूर मुतहदा मेंबर बायकाट कर हलिया वह उन हवाले से कल सिंध असेंबली के इजलास स्पीकर अवेस कादर शाह के सदारत हेठ शुरू थो इजलास दौरान अल्तवा वाली रिथ से बहस दौरान खिताब कदे सिंध के वे वजीर सैद मुराद अली शाह सिंध असेंबली सूबे की विरासत नवन सूबन या इंतजामी इकाइन के क्याम जो सभी बाहरी कोशिशों गडियल तौर से रद्द कदी एक तारीख ठहरा मंजूर किया है वे वजीर सैद मुराद अली शाह तो सिंध के जाग्राफियाई हदन कें भी किस्म की फेरफार या टुकड़ा करण कें भी सूरत में कबूल जोगो अमल ना है उन्हें चो तो पाकिस्तान ठाण के सूबो सिंध जो हथ सब का मथे हुयो सिंध सब का अग 1938 में कायद आजम मोहम्मद अली जना के सदारत हेठ कराची के जलसे में वो ठहरा पास कियो जेको 23 मार्च 1940 के लाहौर वारे पाकिस्तान के ठहरा जो बुनियाद बनियो उन दुख जो इजहार किया तो बार बार पाकिस्तान के बचाईंदड़ सूबे सिंध ते ही इल्ज़ाम तराशी कई वेंदी है उन कौमी असेंबली के खबरदार किया तो आइन के तहत को भी सिंध जहा टुकड़ा करण की गाल भी नथो कर सके आई जी सिंध जावेद आलम ओढ़ो के सदारत हेठ सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में सूबे अंदर अमन अमान की मजमू सूरत हाल डोहन खास तौर से स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम बाबत आला सतह से इजलास थो एडिशनल आई जी कराची आजाद खान शहर में अमन अमान डोहन खास तौर से स्ट्रीट क्राइम की मजमू सूरत हाल बाबत तफसीली ब्रीफिंग दिनी आजाद खान तो स्ट्रीट क्राइम में मुलविस ग्रोहन उन सहूलतकार खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई जारी जैसे तो मुख्तलिफ डोहन में मुलविस आदि जवाबदार की डेटा गड कर उन्होंने गिरफ्तारी के लिए मरबूत हिकमत अमली अख्तियार कई वही है आई जी सिंध जावेद आलम ओढ़ो समूर जिलों के स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए कार्रवाई के तेज असरायतों बनाने की हिदायत कई उन चोरी थे मोटरसाइकिल फोन खरीद कदड़न खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाने समूर जिलों में पुलिस पेट्रोलिंग पिकेटिंग स्नैप चेकिंग के असरायतों बनाने जो हिदायतों जारी क्यों आई जी सिंध स्पेशल ब्रांच के पुलिस पेट्रोलिंग सिक्योरिटी कदम बाबत ऑफिसर के बरवक

AIG Operations, SSP AVLC, SSP SIU, SSP Kiamari ऐं SSP DIT शिरकत कई, जॾहिं त ज़ोनल ऐं डिविज़नल DIGs ऐं ज़िले SSPs वीडियो लिंक ज़रिए इजलास में शरीक थिया। सिंधु हुकूमत पारां रबीअ जी मुंद साल 2026-27 दौरान आबादारनि खे DAP भाण ते सब्सिडी ॾियण बाबति तजवीज़ुनि ते गौर जारी करे छॾियो। उन हवाले सां सिंध काबीना जे ज़राअत बाबति क़ाइम ज़ेली कमेटी जो इजलासु ज़राअत वारे वज़ीर मोहम्मद बख़्श ख़ान महर जे सदारत हेठि थियो, जंहिंमें आपाशीअ वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो ऐं सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार शाह ऐं मखदूम महबूब ज़मा ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास दौरान ज़राअत वारे वज़ीर मोहम्मद बख़्श ख़ान महर ॻाल्हाईंदे चयो त आबादकारनि खे रिलीफ़ फ़राहम करण लाइ मुख़्तलिफ़ तजवीज़ू ऑप्शन्स जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। ज़ेली कमेटी जे मेंबरनि खां DAP सब्सिडी बाबति वधीक तजवीज़ूं पिण तलब कयूं वयूं आहिनि। हुन चयो त DAP सब्सिडी जे मामले ते ज़ेली कमेटी जा वधीक हिकु या ॿ इजलास पिण मुनक़िद कया वेंदा। आपाशीअ वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो चयो त ईंदड़ इजलासनि में मेंबरनि जी तजवीज़ ऐं सिफ़ारिश खां हतमी शिकिल ॾिनी वेंदी, जॾहिं त ज़ेली कमेटी जूं हतमी सिफ़ारिशूं वधीक इजलास खां पोइ मंज़ूरीअ लाइ सिंध काबीना आॾो पेश कयूं वेंदियूं। सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह ऐं मखदूम महबूब ज़मा चयो त आबादकारनि खां वधि खां वधि रिलीफ फराहम करण सिंध हुकूमत जी तरजीह आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असेंबलीअ में सिंध जे विरागे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर थियण बावजूदि वफ़ाक़ी वज़ीरनि तरफ़ां नवनि सूबनि इंतिज़ामी यूनिटनि ऐं निज़ाम बाबति ॾिनल बयाननि जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कंदे अहिड़नि बयाननि खे वफ़ाक़ तरफ़ां सूबे जे आइनी हैसियत में मुदाख़लत क़रार ॾिनो आहे। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ खां मुतालबो कयो आहे त वफ़ाक़ी वज़ीरनि जे बयाननि जो नोटिस वठी अहिड़ी बयानबाज़ी बंदि कराई वञे। पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत खे ख़बरदार कयो आहे त जेकॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत आइन में तरमीम करणु चाहे थी त वफ़ाक़ वटि पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत मौजूदु न आहे, तंहिं करे जमहूरियत जी तसलसुल खे कमज़ोर न कयो वञे ऐं मुल्क जी सालमियत सां खेॾण जी कोशिश न कई वञे। पीपल्स पार्टी चयो त पार्टी मुल्क में जमहूरियत जे तसलसुल चाहे थी, पर अरिड़हीं तरमीम सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी सूबनि जी वहदत ऐं सूबनि जे हक़नि ते कंहिं बि सूरत में धाड़ो हणणु न ॾींदी, तंहिं करे सूबनि जे आइनी हैसियत में मुदाख़लत बंदि कई वञे। उहो मुतालबो छंछरु ॾींहुं पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खेड़े जे सदारत हेठि थियल इजलास में कयो वियो। इजलास में सूबाई जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, पीपल्स पार्टी जा समूरा डिवीज़नल सदर जिन में ज़ियालो सलंजार, जाम इकरामल्ला ऐं ॿिया शामिल हुआ, समूरनि ज़िले सदरनि ऐं मातहत विंग्स जी सूबाई सदरनि शिरकत कई। इजलास में सिंध असेंबली जे ठहराउ खां पोइ वफ़ाक़ी वज़ीरनि जे बयाननि ऐं सिंध जे सियासी सूरत हाल जो पिणु जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में चयो त पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत जो तसलसुल चाहे थी, पर अरिड़हीं तरमीम सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी सूबनि जी वहदत ऐं सूबनि जे हक़नि ते कंहिं बि सूरत में धाड़ो हणणु न ॾींदी। इजलास में ईंदड़ हफ़्ते 12 सेप्टेम्बर ते सिंध जे समूरनि तालके हेडक्वार्टर्स में सिंध असेंबलीअ तरफ़ां पीपल्स पार्टी जी कोशिशुनि सां सिंध जे विरागे ख़िलाफ़ क़रारदाद मंज़ूर करण ते भेटा पेश करणु ऐं सिंध धरती माउ आहे जे उनवान सां रैलियूं कढण जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जी लताड़ ख़िलाफ़ सिंध स्टूडेंट्स एक्शंस कमेटी जे एहतजाजी कैंप काल्ह 43 ॾींहं बि जारी रही। सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटीअ जे कन्वेनर शागिर्द अॻवाण ज़बीउल्ला मस्तोई एहतजाजी कैंप ते साहबनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त मेरिट जी लताड़ ऐं करप्शन ख़िलाफ़ नसीब नगर चौक खां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे हेड ऑफिस साम्हूं कैंप ताईं रैली ऐं शम्सुल उलमा दाऊद पुटो लाइब्रेरीअ खां मेरिट जो जनाज़ो कढण खां पोइ हाणे 7 सेप्टेम्बर ते सिंध यूनिवर्सिटी खां प्रेस क्लब जाम शोर ताईं रैली कढी वेंदी। हुन चयो त मूंखे मक़सदु तां हटाइण लाइ धमकियूं मिलियूं रहियूं आहिनि ऐं घणनि ई माण्हुनि खे मुंहिंजे पोयां बि पछो वियो आहे। हुन चयो त पंहिंजनि मुतालबनि खां पोइ ते न हटंदासीं। हिकु महीने खां वधीक अरसो गुज़री वियो आहे, जिदोजहद मेरिट इंसाफ़ ऐं सिंध जे शागिर्दनि जे हक़नि लाइ जारी रहंदी। असां सिंध जे हर शागिर्द जी आवाज़ जी हैसियत सां जिदोजहद जे मैदान ते बीठा आहियूं। अल्टीमेटम खां पोइ ईंदड़ एहतजाजी तहरीक जो तरीक़ो हालतुनि मुताबिक़ तय कयो वेंदो। CM हाउस, बाईपास, कराची या प्रेस क्लब हुजे, असां पंहिंजे आवाज़ खे हर लाॻापियल फोरम ते खणी वेंदासीं। जुमे ॾींहुं सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जे एहतजाजी कैंप ते मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तनज़ीमुनि ऐं सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि जे वफ़द अची शागिर्दनि सां यकजहत जो इज़हार कयो। स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जे अॻवाननि वजाहत हिंगोर जो, फ़ख्र ज़मा खुहारो, सिकी लधो चांडियो, हिमायत कंदड़ धुरनि जो थोरा मञा। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट।
पाकिस्तान की

0: जी जान तारो मसालो हर वे जे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर का नालो वठी खरीद करयो
1: उम्मीद के दिए जलते हैं।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
0: दुश्मन के लिए तबाही तबाही पाक फौज का हर सिपाही 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान पाक फौज को सलाम।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्ने के लिए मिल्क राइज एक्ने क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्ने क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109
0: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
0: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601

आप सुन रहे हैं जीए एफएम नेटवर्क पर योमे दिफाई पाकिस्तान की पुरजोश नशरिया पाक फौज को सलाम।

रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ, बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सकंदा सिंध हिक रहंदी को भी हिस्सो धार या वफाक हवाले न थींदो सिंध असेंबली मां नवन सूबन ऐं यूनिटनि ख़िलाफ़ ठहिरा मंज़ूर मुतहदा जो वॉकआउट सिंध में स्ट्रीट क्राइम रोकण लाइ हिकमत अमली तयारु एस एस पी खां आदि रुहारनि जो रिकॉर्ड तलब सिंध में रबी जी मुद दौरान आबादगारनि खे डी ए पी भाण ते सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो पीपल्स पार्टी जो 12 सेप्टेंबर ते सॼे सिंध में सिंध धरती माउ आहे जे उनवान सां रैलियूं कढण जो ऐलान मेरठ जी लताड़ ख़िलाफ़ एहतजाज कंदड़नि ख़िलाफ़ धमकियूं सूमर ते हर हाल में मार्च थींदो अॻवाण ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा सिंध जी वहदत वफ़ाक़ जी मज़बूती ऐं क़ौमी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जी ज़रूरत आहे।

0: पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल अहिड़े मरहले में दाखिल थी चुकी आहे जिते सियासी इख़्तिलाफ़नि खे जमहूरियत जो हिसो समझंदे बि वफ़ाक़ी ढांचे, सूबाई वहदतुनि ऐं पार्लियामानी निज़ाम बाबति वधंदड़ बहस खे संजीदगीअ साम्हूं ॾियणो ज़रूरी आहे। ख़ासि तौर ते सूबनि जी विरासत बाबति बहस जेकॾहिं सियासी एजेंडा जो हिसो बणिजी वञे त उन जा असर रुगो हिकु सूबे ते महदूद न रहंदा। अहिड़ी सूरत हाल में सियासी कुवतुनि खे रदे अमल बदिरां ॻाल्हियुनि ऐं आइनी रस्ते खे तरजीह ॾियणु घुरिजे। बलोचिस्तान जी सूरत हाल खां पोइ सिंध में सूबाई विरासत बाबति बहस ॿीहर क़ौमी सियासत जो अहम मौज़ू बणिजी रहियो आहे। सिंध लाइ सभ खां अहम ॻाल्हि उहा आहे त इंतिज़ामी सहूलियतुनि, वसीलनि जी मुनसफ़ाणे विर्छ ऐं अवामी मसइलनि जे हल बाबति जाइज़ सवालनि खे सिंध जे तारीख़ी, सकाफ़ती, सियासती ऐं आइनी हैसियत खे कमज़ोर करण वारी सोच खां अलॻि रखियो वञे। इंतज़ामी सुधारा हिकु अलॻि मामिलो आहे, जॾहिं त कंहिं सूबे जी वहदत ऐं आइनी हैसियत खे मुतासिर करणु ॿी ॻाल्हि आहे। सिंध पाकिस्तान जो वफ़ाक जे अहम वहदतुनि मां हिकु आहे। सिंध जी अवाम खे पंहिंजे सियासी, इंतज़ामी ऐं वसीलनि बाबति हक़नि ते ख़दशा आहिनि, जिन खे नज़रअंदाज़ करणु बदिरां क़ौमी सतह ते संजीदा ॻाल्हि ॿोल थियणु घुरिजे। सिंध जी वहदत बाबति को बि फ़ैसिलो सियासी नारेबाज़ी या बंदि कमरे जे ॻाल्हियुनि सां न, पर पार्लियामेंट, वसी सियासी इतफ़ाक़ राय ऐं आइनी तरीक़ेकार सां थियणु घुरिजे। उन पसे मंज़र में हिकु जामिया क़ौमी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जी ज़रूरत शिदत सां महसूस थिए थी, जंहिं में हुकूमती ऐं मुखालिफ़ धुर सां गॾु समूरनि सूबनि जूं सियासी पार्टियूं, पार्लियामानी कुवतूं ऐं आइनी माहिर शामिल हुजनि। मक़सद खे हिकु जमायत खे फ़ाइदो ॾियणु न, पर वफ़ाक़, सूबनि जे हक़नि ऐं मुल्क जे सियासी इस्तेहकाम बाबति गॾियल उसूल तय करणु हुजे। मुल्क जे सीनियर सियासी क़यादत, ख़ासि तौर ते आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फज़लुर रहमान ऐं मियाँ नवाज़ शरीफ़ जहिड़नि तजुर्बेकार अॻुवाणनि वटि ॻाल्हियुनि ऐं मुफ़ाहमत जो डिघो तजुर्बो मौजूदु आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजे सियासत सफ़र में मुफ़ाहमती सियासत लाइ सुञाता वञनि था। मौजूदा सूरत हाल में बि हू मुख़्तलिफ़ सियासी कुवतुनि खे हिकु मेज़ ते आणण में किरदारु अदा करे सघनि था। पाकिस्तान जो आलमी किरदारु पिणु अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम सां जुड़ियल आहे। सऊदी अरब ऐं तुर्कीअ सां वधंदड़ सहकार ऐं इलाइक़ाई मामलनि में पाकिस्तान जे फ़ाल किरदार लाइ ज़रूरी आहे त मुल्क अंदरि सियासी निज़ाम एतमाद, तसलसुल ऐं आइनी उसूलनि ते क़ाइमु हुजे। मुसलसल सियासी चिकताण ऐं सूबाई वहदतुनि बाबति गैर यकीनी सूरतहाल मुल्क जी मजमूई तासुर खे मुतासिर करे सघे थी। सिंध समेत समूरनि सूबनि खे उहो बि यकीन ॾियारणु ज़रूरी आहे त संदनि आइनी हैसियत, वसीलनि ऐं सियासी हक़नि बाबति फ़ैसिला कंहिं बंदि कमरे में न थींदा। जेकॾहिं मुस्तक़बिल में इंतज़ामी यूनिटनि बाबति का तजवीज़ साम्हूं अचे थी त उन ते वसी सियासी इतफ़ाक़ राय, अवामी रज़ामंदी ऐं आइनी घुर्जुनि तहत ई गौर करणु घुरिजे। पाकिस्तान खे नई सियासी महाज़ आराईअ खां वधीक मुफ़ाहमत, आइनी तसलसुल ऐं इदारनि जी मज़बूतीअ जी ज़रूरत आहे। सिंध जूं वहदतूं मुल्क जी कमज़ोरी न, पर पाकिस्तान जी वफ़ाक़ी ताक़त जो हिसो आहिनि। सिंध खे मज़बूत करणु ऐं उन जे आइनी हक़नि जे तहफ़ुज़ करणु ई वफ़ाक़ खे मज़बूत करण जो रस्तो आहे। ही हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359212020।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट प्राइस जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: दुश्मन के लिए तबाही, तबाही। पाक फौज का हर सिपाही, हर सिपाही। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान को सलाम।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
2: जा पीओ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध अई वठी अच
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
4: हा भाग भरी चंगो थो लगे मा हाणे ही थो वठी अचा
5: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करयो
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
6: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-310-509
7: अस्सलाम वालेकुम अदा
8: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा
9: यार आज एफएम 94 सिटी करेडो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
7: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
8: हां दा कारोबारी इश्तिहारात मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
9: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते मंसूर अहमद मेमन 03001-380-8347
10: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

Sit round up me ajam ham budi sakna. Sindh hikrandi ko bhiso dhar ya wafaq hawale na thindo. Sindh assembly ma navan suban ay unton khilaf thara mazdoor. Mutahida jo walkout. Sindh me street crime rokan lai hikmat e amli tayar. SSPs khan adi roharin jo record talab. सिंध में रबी की मुद दौरान आबादगार के डीएपी भाण से सब्सिडी देने जो फैसलो पीपल्स पार्टी जो 12 सितंबर से सजे सिंध में सिंध धरती माँ आहे जे उन्वान से रैली कढ़ने जो ऐलान मेरठ की लताड़ खिलाफ एहतजाज कदरन खिलाफ धमकियों सूमर से हर हाल में मार्च थो अगवाण स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सकंदा सिंध जी वहदत वफाक जी मजबूती ऐं कौमी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जी जरूरत है।

सिंध असेंबली सिंध के मौजूदा इलाकन सरजमीन तालकन जिलन डिवीजनों के सिंध जो अणटड़ हिस्सों करार दे सिंध की वैदानियत के कें किस्म के विरहगे के मुकम्मल रद्द कदे वादे किया है सिंध के विरहण उन मौजूदा इलाकई हदू तब्दील करनी है सिंध की सरजमीन में को नव सूबो कायम कर पेश कल हर तजवीज मनसूबे स्कीम या आइनी बंदोबस्त के उन नालो या नोयत कुछ भी हुए ऐवान उन रद्द करे तो पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार कड़ो पारा पेश कल ठहरा अक्सर ते राय से मंजूर मुतहदा मेंबर बायकाट कर हलिया वह उन हवाले से कल सिंध असेंबली के इजलास स्पीकर अवेस कादर शाह के सदारत हेठ शुरू थो इजलास दौरान अल्तवा वाली रिथ से बहस दौरान खिताब कदे सिंध के वे वजीर सैद मुराद अली शाह सिंध असेंबली सूबे की विरासत नवन सूबन या इंतजामी इकाइन के क्याम जो सभी बाहरी कोशिशों गडियल तौर से रद्द कदी एक तारीखी ठहरा मंजूर किया है वे वजीर सैद मुराद अली शाह सिंध के

ॾोहन ख़ासि तौर ते स्ट्रीट क्राइम जी रोकथाम बाबति आला सतह ते इजलास थियो। एडिशनल आई जी कराची आज़ाद खान शहर में अमन अमान ऐं ॾोहन ख़ासि तौर ते स्ट्रीट क्राइम जी मजमूई सूरत हाल बाबति तफ़सीली ब्रीफिंग ॾिनी। आज़ाद खान चयो त स्ट्रीट क्राइम में मुलविस गिरोहनि ऐं उन्हनि जे सहूलतकारनि ख़िलाफ़ टारगेटेड कार्रवायूं जारी आहिनि, जॾहिं त मुख़्तलिफ़ ॾोहनि में मुलविस आदि जवाबदारनि जी डेटा गॾु करे उन्हनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ मरबूत हिकमत अमली अख़्तियार कई वई आहे। आई जी सिंध जावेद आलम ओडो समूरनि ज़िलनि खे स्ट्रीट क्राइम जे रोकथाम जे लाइ कार्रवाइयुनि खे वधीक तेज़ ऐं असराइतो बनाइण जी हिदायत कई। हुन चोरी थियल मोटरसाइकिल फोन ख़रीद कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई यकीनी बनाइण ऐं समूरे ज़िलनि में पुलिस पेट्रोलिंग पिकेटिंग ऐं स्नैप चेकिंग खे वधीक असराइतो बनाइण जूं हिदायतूं जारी कयूं। आई जी सिंध स्पेशल ब्रांच खे पुलिस पेट्रोलिंग ऐं सिक्योरिटी कदमनि बाबति आफिसरनि खे बरवक़्त आगाह रखण जी हिदायत कई। जावेद आलम ओडो समूरनि ज़िलनि खे आदि ॾोहारियुनि घुर्बल ऐं इश्तिहारी जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाइयुनि खे वधीक तेज़ ऐं असराइतो बनाइण जी हिदायत कई। हुन चयो त ड्यूटीअ में गिफ़रत ऐं कोताही कंदड़ आफिसरनि ऐं अहलकारनि ख़िलाफ़ सख़्त खाते वारी कार्रवाई कई वञे। आई जी सिंध शहरनि जे दाख़िली ऐं ख़ारजी रस्तनि ते AVLC जी निगरानीअ में रहनुमाई हेठि आफ़िसरनि ऐं अहलकारनि खे मुक़ररु करण जी हिदायत कई। आई जी सिंध समूरनि DIGs खे पंहिंजे लाॻापियल SSPs सां अमन अमान ऐं ॾोहनि जी रोकथाम बाबति बाक़ाइदगीअ सां इजलास मुनक़िद करण जी पिणु हिदायत कई। इजलास में एडिशनल IG कराची आज़ाद खान, एडिशनल IG CTD, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, DIG हेडक्वार्टर्स, DIG एस्टेब्लिशमेंट ऐं स्पेशल ब्रांच, AIG ऑपरेशन्स, SSP AVLC, SSP SIU, SSP कियामाड़ी ऐं SSP DIT शिरकत कई। जॾहिं त ज़ोनल ऐं डिवीज़नल DIGs ऐं ज़िले SSPs वीडियो लिंक ज़रिए इजलास में शरीक थिया। सिंधु हुकूमत पारां रबीअ जी मुद साल 2026-27 दौरान आबादारनि खे DAP भाण ते सब्सिडी ॾियण बाबति तजवीज़ुनि ते ग़ौर जारी करे छॾियो। उन हवाले सां सिंध काबीना जे ज़राअत बाबति क़ाइमु ज़ेली कमेटी जो इजलास ज़राअत वारे वज़ीर मोहम्मद बख़्श ख़ान महर जे सदारत हेठि थियो, जंहिं में आपाशीअ वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो ऐं सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार शाह ऐं मखदूम महबूब ज़मा ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास दौरान ज़राअत वारे वज़ीर मोहम्मद बख़्श ख़ान महर ॻाल्हाईंदे चयो त आबादकारनि खे रिलीफ़ फ़राहम करण लाइ मुख़्तलिफ़ तजवीज़ूं ऑप्शन्स जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। ज़ेली कमेटी जे मेंबरनि खां DAP सब्सिडीअ बाबति वधीक तजवीज़ूं पिणु तलब कयूं वियूं आहिनि। हुन चयो त DAP सब्सिडीअ जे मामले ते ज़ेली कमेटी जा वधीक हिकु या ॿ इजलास पिणु मुनक़िद कया वेंदा। आपाशीअ वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो चयो त ईंदड़ इजलासनि में मेंबरनि जी तजवीज़ ऐं सिफ़ारिश खां हतमी शिकिल ॾिनी वेंदी, जॾहिं त ज़ेली कमेटी जूं हतमी सिफ़ारिशूं वधीक इजलास खां पोइ मंज़ूरीअ लाइ सिंध काबीना आॾो पेश कयूं वेंदियूं। सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह ऐं मखदूम महबूब ज़मा चयो त आबादगारनि खां वधि रिलीफ फराहम करण सिंध हुकूमत जी तरजीह आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असेंबलीअ में सिंध जे विरागे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर थियण बावजूदि वफ़ाक़ी वज़ीरनि तरफ़ां नवनि सूबनि इंतिज़ामी यूनिटनि ऐं निज़ाम बाबति ॾिनल बयाननि जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कंदे अहिड़नि बयाननि खे वफ़ाक तरफ़ां सूबे जे आइनी हैसियत में मुदाख़लत करार ॾिनो आहे। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खां मुतालबो कयो आहे त वफ़ाक़ी वज़ीरनि जे बयाननि जो नोटिस वठी अहिड़ी बयानबाज़ी बंदि कराई वञे। पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत खे ख़बरदार कयो आहे त जेकॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत आइन में तरमीम करणु चाहे थी त वफ़ाक वटि पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत मौजूदु न आहे, तंहिं करे जमहूरियत जी तसलसुल खे कमज़ोर न कयो वञे ऐं मुल्क जी सालमियत सां खेॾण जी कोशिशि न कई वञे। पीपल्स पार्टी चयो त पार्टी मुल्क में जमहूरियत जे तसलसुल चाहे थी, पर अरिड़हीं तरमीम सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी सूबनि जी वहदत ऐं सूबनि जे हक़नि ते कंहिं बि सूरत में धाड़ो हणणु न ॾींदी, तंहिं करे सूबनि जी आइनी हैसियत में मुदाख़लत बंदि कई वञे। उहो मुतालबो छंछरु ॾींहुं पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खेड़े जे सदारत हेठि थियल इजलास में कयो वियो। इजलास में सूबाई जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी, पीपल्स पार्टी जा समूरा डिवीज़नल सदर जिन में ज़ियालो सलंजार, जाम इकरामुल्ला ऐं ॿिया शामिल हुआ, समूरनि ज़िले सदरनि ऐं मातहत विंग्स जी सूबाई सदरनि शिरकत कई। इजलास में सिंध असेंबली जे ठहराउ खां पोइ वफ़ाक़ी वज़ीरनि जे बयाननि ऐं सिंध जे सियासी सूरत हाल जो पिणु जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में चयो त पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत जो तसलसुल चाहे थी, पर अरिड़हीं तरमीम सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी सूबनि जी वहदत ऐं सूबनि जे हक़नि ते कंहिं बि सूरत में धाड़ो हणण न ॾींदी। इजलास में ईंदड़ हफ़्ते 12 सेप्टेम्बर ते सिंध जे समूरनि तालके हेडक्वार्टर्स में सिंध असेंबलीअ तरफ़ां पीपल्स पार्टी जी कोशिशुनि सां सिंध जे विरागे ख़िलाफ़ क़रारदाद मंज़ूरु करण ते भेटा पेश करणु ऐं सिंध धरती माउ आहे जे उनवान सां रैलियूं कढण जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे।
सिंधु पब्लिक सर्विस कमी

0: एक्शन में मेरठ जी लताड़ खिलाफ़ सिंध स्टूडेंट्स एक्शंस कमेटी जे एहतजाजी कैंप काल्ह 43 ॾींहं बि जारी रही। सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जे कन्वेनर शागिर्द अॻवान ज़बीउल्लाह मस्तोई एहतजाजी कैंप ते साहिबनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त मेरठ जी लताड़ ऐं करप्शन ख़िलाफ़ नसीबनगर चौक खां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे हेड ऑफिस साम्हूं कैंप ताईं रैली ऐं शम्सुल उलमा दाऊद पुटो लाइब्रेरीअ खां मेरठ जो जनाज़ो कढण खां पोइ हाणे 7 सेप्टेंबर ते सिंध यूनिवर्सिटी खां प्रेस क्लब जाम शुरू ताईं रैली कढी वेंदी। हुन चयो त मूंखे मक़सद तां हटाइण लाइ धमकियूं मिलियूं रहियूं आहिनि ऐं घणनि ई माण्हुनि खे मुंहिंजे पोयां बि पछो वियो आहे। हुन चयो त पंहिंजनि मुतालबनि खां पोइ हिते न हटंदासीं। हिकु महीने खां वधीक अरसो गुज़री वियो आहे, जिदोजहद मेरिट इंसाफ़ ऐं सिंध जे शागिर्दनि जे हक़नि लाइ जारी रहंदी। असां सिंध जे हर शागिर्द जी आवाज़ जी हैसियत सां जिदोजहद जे मैदान ते बीठा आहियूं। अल्टीमेटम खां पोइ ईंदड़ एहतजाजी तहरीक जो तरीक़ो हालतुनि मुताबिक़ तय कयो वेंदो। CM हाउस, बाईपास, कराची या प्रेस क्लब हुजे, असां पंहिंजे आवाज़ खे हर लाॻापियल फोरम ते खणी वेंदासीं। जुमे ॾींहुं सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जे एहतजाजी कैंप ते मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तनज़ीमुनि ऐं सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि जे वफ़द अची शागिर्दनि सां यकजहत जो इज़हार कयो। स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जे अॻवाननि वजाहत हिंगोर जो, फ़ख्र ज़मां खुहारो, सिकी लधो चांडियो, हिमायत कंदड़ धुरनि जो थोरा मञा। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल अहिड़े मरहले में दाख़िल थी चुकी आहे जिते सियासी इख़्तिलाफ़नि खे जमहूरियत जो हिसो सम्झंदे बि वफ़ाक़ी ढांचे, सूबाई वहदतुनि ऐं पार्लियामानी निज़ाम बाबति वधंदड़ बहस खे संजीदगीअ साम्हूं ॾियणो ज़रूरी आहे। ख़ासि तौर ते सूबनि जी विरासत बाबति बहस जेकॾहिं सियासी एजेंडा जो हिसो बणिजी वञे त उन जा असर रुॻो हिकु सूबे ते महदूद न रहंदा। अहिड़ी सूरतहाल में सियासी क़ुवतुनि खे रदि अमल बदिरां ॻाल्हियुनि ऐं आइनी रस्ते खे तरजीह ॾियणु घुरिजे। बलोचिस्तान जी सूरतहाल खां पोइ सिंध में सूबाई विरासत बाबति बहस ॿीहर क़ौमी सियासत जो अहम मौज़ू बणिजी रहियो आहे। सिंध लाइ सभ खां अहम ॻाल्हि उहा आहे त इंतिज़ामी सहूलियतुनि, वसीलनि जे मुनसफ़ाणे विर्छ ऐं अवामी मसइलनि जे हल बाबति जाइज़ सवालनि खे सिंध जे तारीख़ी, सकाफ़ती, सियासती ऐं आइनी हैसियत खे कमज़ोर करण वारी सोच खां अलॻि रखियो वञे। इंतज़ामी सुधारा हिकु अलॻि मामिलो आहे, जॾहिं त कंहिं सूबे जी वहदत ऐं आइनी हैसियत खे मुतासिर करणु ॿी ॻाल्हि आहे। सिंध पाकिस्तान जो वफ़ाक जे अहम वहदतुनि मां हिकु आहे। सिंध जी अवाम खे पंहिंजे सियासी, इंतज़ामी ऐं वसीलनि बाबति हक़नि ते ख़दशा आहिनि, जिन खे नज़रअंदाज़ करण बदिरां क़ौमी सतह ते संजीदा ॻाल्हि ॿोल थियणु घुरिजे। सिंध जी वहदत बाबति को बि फ़ैसिलो सियासी नारेबाज़ी या बंदि कमरे जे ॻाल्हियुनि सां न, पर पार्लियामेंट, वसी सियासी इतफ़ाक़ राय ऐं आइनी तरीक़ेकार सां थियणु घुरिजे। उन पसे मंज़र में हिकु जामिया क़ौमी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जी ज़रूरत शिदत सां महसूसु थिए थी, जंहिं में हुकूमती ऐं मुख़ालिफ़ धुर सां गॾु समूरनि सूबनि जूं सियासी पार्टियूं, पार्लियामानी क़ुवतूं ऐं आइनी माहिर शामिल हुजनि। मक़सदु कंहिं हिकु जमायत खे फ़ाइदो ॾियणु न, पर वफ़ाक़ सूबनि जे हक़नि ऐं मुल्क जे सियासी इस्तेहकाम बाबति गॾियल उसूल तय करणु हुजे। मुल्क जे सीनियर सियासी क़यादत, ख़ासि तौर ते आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फज़ल रहमान ऐं मियाँ नवाज़ शरीफ़ जहिड़नि तजुर्बेकार अॻुवाणनि वटि ॻाल्हियुनि ऐं मुफ़ाहमत जो डिघो तजुर्बो मौजूदु आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजे सियासत सफ़र में मुफ़ाहमती सियासत लाइ सुञाता वञनि था। मौजूदा सूरत हाल में बि हू मुख़्तलिफ़ सियासी क़ुवतुनि खे हिकु मेज़ ते आणण में किरदारु अदा करे सघनि था। पाकिस्तान जो आलमी किरदारु पिणु अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम सां जुड़ियल आहे। सऊदी अरब ऐं तुर्कीअ सां वधंदड़ सहकार ऐं इलाइक़ाई मामलनि में पाकिस्तान जे फ़ाल किरदार लाइ ज़रूरी आहे त मुल्क अंदरि सियासी निज़ाम एतमाद, तसलसुल ऐं आइनी उसूलनि ते क़ाइमु हुजे। मुसलसल सियासी छिकताण ऐं सूबाई वहदतुनि बाबति ग़ैर यकीनी सूरतहाल मुल्क जी मजमूई तासुर खे मुतासिर करे सघे थी। सिंध समेत समूरनि सूबनि खे उहो बि यकीन ॾियारणु ज़रूरी आहे त संदन आइनी हैसियत, वसीलनि ऐं सियासी हक़नि बाबति फ़ैसिला कंहिं बंदि कमरे में न थींदा। जेकॾहिं मुस्तक़बिल में इंतज़ामी यूनिटनि बाबति का तजवीज़ साम्हूं अचे थी त उन ते वसी सियासी इतफ़ाक़ राय, अवामी रज़ामंदी ऐं आइनी घुर्जुनि तहती गौर करणु घुरिजे। पाकिस्तान खे नई सियासी महाज़ाराईअ खां वधीक मुफ़ाहमत, आइनी तसलसुल ऐं इदारनि जी मज़बूतीअ जी ज़रूरत आहे। सिंध जूं वहदतूं मुल्क जी कमज़ोरी न पर पाकिस्तान जी वफ़ाक़ी ताक़त जो हिसो आहिनि। सिंध खे मज़बूत करणु ऐं उन जे आइनी हक़नि जे तहफ़ुज़ करण ई वफ़ाक़ खे मज़बूत करण जो रस्तो आहे। ही हुयो हिन वक़्त जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।